0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे भी आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: What if Pac-Man wasn't on a screen anymore but running around the room with you? That is the idea behind a new gaming venue in London, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.
2: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai to aap is platform Qwala se pooch sakte hain. Mere paas 10 lakh rupaye hain, main stock market mein kahan lagaun? Ek hi window mein पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट पर आप

0: What if Pac-Man wasn't on a screen anymore but running around the room with you? That is the idea behind a new gaming venue in London, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.
1: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai to aap is platform Qala se pooch sakte hain. Mere paas 10 lakh rupaye hain. Main stock market mein kahan lagaun? Ek hi window mein पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. Qala में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. Qala ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
1: मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, Qala पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको Qala ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था Qala से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: Pac-Man wasn't on a screen anymore but running around the room with you. That is the idea behind a new gaming venue in London, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आप जाते हैं.

0: गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव था प्रधानमंत्री जी का।
1: आई थिंक इस तरह से वो हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग देश को इन्फ्लुएंस करने में, एक उसको एक दिशा देने में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं।
2: गांधी जी के विचारों पर फिर से जाने का न्योता उन्हें दिया है।
0: पर्सनली हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलके आपको आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सो अच्छा लगता है सबको।

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला intel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
2: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas, seeing is believing.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
4: ब्रांच नेटवर्क बिग।
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
5: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
0: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege, RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
6: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai, to aap is platform Qala se pooch sakte hain. Mere paas 10 lakh rupaye hain. Main stock market mein kahan lagaun? Ek hi window mein pure mere stock market ke investment ki कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
7: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। Qala में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। Qala ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए। ट्राई इट योरसेल्फ।

स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: Tschüss. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
3: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy moments.

0: यार लोन भूल गया मैरी गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
5: Adi, I need to open a savings account.
1: Arre, Ujjivan Small Finance Bank ma khol lo.
5: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
5: Okay.
3: Oh, Jeevan, nothing small about us.

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई

0: it yourself.
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
2: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: This is Defense Pulse.
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
3: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
4: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
5: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
6: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
7: अगर आप अभी 25 के हैं 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर क्वाला मैं अभी 25 साल की हूँ 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए ट्राई इट योरसेल्फ
8: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है सबसे पहले आपको करना क्या है क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए हैं मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी ये तो मेरा सवाल है आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं
9: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WeOn.

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy
1: memories. देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। साथियों, मुझे याद है जब मैं वड़नगर के स्कूल में पढ़ने जाता था तो हमारे मास्टर जी तरह तरह से अलग अलग पाठ पढ़ाते थे और क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले स्टूडेंट्स में हमेशा मेरा नाम होता था। सीखने की वो ललक, सीखने की वो ललक मेरे जीवन का हिस्सा बन गई और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा। साथियों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई। जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा। हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।

साथियों, आज मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में कोई घटना व्यर्थ नहीं गई। हर घटना ने मुझे सिखाया, मोरबी की बाढ़ ने मुझे दिन रात सेवा कार्यों में जुटने का रास्ता दिखाया, सिखाया मुझे सेवा करने का भाव। भूज के भूकंप ने मुझे पुनर्निर्माण के लिए डटे रहना सिखाया। चंद्रयान ने मुझे असफलता से उठना सिखाया। कोरोना महामारी ने मुझे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का महत्व समझाया। मीडिया ने मुझे खट्टे मीठे अनुभवों के बीच आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जीवन के हर प्रवास ने मुझे नीतियों में संवेदना का रास्ता दिखाया। हर गांव, हर गरीब ने मुझे सिखाया कि साधन संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। और हौसले बुलंद होने चाहिए। साथियों, वेद से विवेकानंद तक जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ। कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। कोटि कोटि स्वयंसेवक जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी है, जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है मां भारती की निस्वार्थ सेवा, जो उस मंत्र को लेकर जीते हैं, हर पल कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दिन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। ऐसे कोटि कोटि स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का भी मुझे भरपूर साथ मिला है। मैं आज अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर प्रत्येक स्वयंसेवक को, प्रत्येक साथी कार्यकर्ता को भी
आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए।

मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।

देवी और सज्जनों, जिस राष्ट्र के लोगों की धमनियों में ऐसा आत्मविश्वास लहू बनकर दौड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की ये निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं? मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली, मैं उन्हें निभाता चला गया। जीवन का एक ही ध्येय था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म। मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार मेरे कर्म पर है। इसलिए मैं कर्म को अपना कर्तव्य मानता हूं। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योगः कर्मसु कौशलम, गीता ने ये भी कहा है, तस्मात् असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए
कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है। कर्म देश के लिए, कर्म देशवासियों के लिए, और इसमें भाव यही है, मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं, श्रेय की भी चिंता नहीं। देश ने अवसर दिया, लोगों ने विश्वास दिया, परिस्थितियों ने सीख दी, जिसकी वजह से मुझे देशवासियों की अविरल सेवा का अवसर मिल रहा है।

देवी और सज्जनों, पद प्रतिष्ठा अधिकार, जब बात देश की होती है तो इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। हमने इस अनादि राष्ट्र में जन्म लिया है, ये एहसास ही अमृत है। इसके सामने सत्ता सुख कुछ भी नहीं है। पद प्रतिष्ठा तो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, लेकिन भारत जैसी पुण्य भूमि नहीं मिलेगी। वो भारत जिसने अंधकार के युग में भी मानवता को ज्ञान दिया, मूल्यों का प्रकाश दिया, उस राष्ट्र सेवा का अवसर मिलना ही अमूल्य है। इन 25 वर्षों का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा कि मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है।

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए।

मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: is Race to Power, only on WeOn.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप

0: India.
1: Guys, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
2: स्मॉल. अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: दिस इज डिफेंस पल्स।
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
3: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
4: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
5: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
6: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.

0: गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव था प्रधानमंत्री जी का।
1: आई थिंक जिस तरह से वो हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग देश को इन्फ्लुएंस करने में, दिशा देने में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं।
2: गांधी जी के विचारों पर फिर से जाने का न्योता उन्होंने हमें दिया है।
0: पर्सनली हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलके आपको, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सो अच्छा लगता है सबको।
3: ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यू बहुत बाद में भी समझ में आती है कि क्या कर रहे हैं।
4: One of the few politicians whose life story has been adapted across all mediums, from best-selling books to biopics to short films and web shows, from real to real. Meet the trendsetter, the trailblazer, the 15th Prime Minister of India, Narendra Modi.
5: Prime Minister Modi is someone who believes in a mission, and he believes that mission can be transformed into his vision. And that vision gets transformed into an action plan. He does not plan for the 5 years that he's been in power. He plans for what is required at that point of time when he was a chief minister for the state of Gujarat for the next 15, 20, 30 years. The same is what he's doing for India.
6: He's a hero. Definitely he's a hero.
7: मैंने जब उनके ऊपर study कर रहा था ना, तो मैं उनकी मानसिकता को ही ज्यादा स्टडी कर रहा था, रादर देन लोग बोलते कि आप उनकी फिजिकलिटीज पे देखो, तो वो उनकी बहुत ही स्ट्रांग है। वो मुझे बहुत ही, जितना भी स्टडी किया तो मुझे वो बहुत लग रहा था कि जो उनकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उनसे जो सीखे हैं या जो भी संत महात्माओं को मिले।

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WeOn brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WeOn. World is one.
3: यार लोन भूल गया मैडी।
4: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: first as Gujarat Chief Minister and later as the country's Prime Minister. Modi also gave us 5 big targets to citizens with the crowds at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi, responding loudly with, "We will do it every time." Listen in.
1: स्वागत है
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं
0: Attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of the citizens, the Prime Minister bowed in reverence to the people of the country.
2: Viksit Bharat by 2047, we will do it. Viksit Bharat by 2047, mere saath boliye, mere saath boliye. Top three economy, top three economy. आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ओलंपिक्स का आयोजन अंतरिक्ष में कदम साथियों ये ऊर्जा ये उत्साह ये आत्मविश्वास ये अद्भुत है
0: The Prime Minister said that his critics and political opponents have taught him the strength of democracy while highlighting the achievements of his government since 2014. He said that he will not quit till India becomes a developed nation.
2: Karma mera dharma rahega. कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा स्वयं से समष्टि तक स्वयं से व्यम तक मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा और जब तक भारत विकसित नहीं होता जब तक भारत विकसित नहीं होता तब तक मैं न रुकूंगा न थकूंगा न अपने पद से डिगूंगा

स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहाँ लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट। यहाँ पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: दिस इज डिफेंस पल्स।
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
3: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
4: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
5: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
6: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
7: Campaigns. Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WeOn.

0: Prime Minister Narendra Modi has given a new mantra for the country's growth ambitions. We will do it. Prime Minister Modi coined the new slogan as he addressed a program organized to mark his 25 years in governance, first as the Gujarat Chief Minister and later as the country's Prime Minister. Modi also gave 5 big targets to citizens with the crowd at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi, responding loudly with, "We will do it every time."
1: Viksit Bharat by 2047, we will do it. Viksit Bharat by 2047, mere saath boliye, mere saath boliye. Top 3 economy, top 3 economy. Bharat, global manufacturing hub, global manufacturing hub, Olympics ka ayojan, Olympics ka ayojan, antariksh mein kadam, antariksh mein kadam. Ye urja, ye utsah, ये आत्मविश्वास ये अद्भुत है.
0: Attributing his entire political journey to unwavering faith and support of the citizens, the Prime Minister bowed in reverence to the people of the country.
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा. आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए. ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है. ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं. मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं.
0: द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट हिज क्रिटिक्स एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैव टॉट हिम द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी व्हाइल हाईलाइटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ हिज गवर्नमेंट सिंस 2014. He said that he will not quit till India becomes a developed nation.
1: Karma mera dharma rahega, kartavya palan mera pran hoega. Swayam se samasti tak, swayam se vayam tak, mere jeevan ka kan kan, chhan chhan, Bharat bhumi ko samarpit rahega. Aur jab tak भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा.

0: in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.

0: 7, we will do it. Viksit Bharat by 2047. Mere saath boliye. Mere saath boliye. Top 3 economy. Top 3 economy. Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat. Global manufacturing hub. Global manufacturing hub. Olympics ka aayojan. Olympics ka aayojan. Antariksh mein kadam. Antariksh mein kadam. साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है.
1: Well, attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of citizens of the country, the Prime Minister bowed in reverence to the people of India.
0: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा. आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए. ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है. ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं. मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं.
1: The Prime Minister said that his critics and political opponents have taught him the strength of democracy while highlighting the achievements of his government since 2014. He said that he will not quit till India becomes a developed nation.
0: कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा. स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यम तक, मेरे जीवन का कण कण, क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा. और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा.

0: familiar to much of the political establishment.
1: एक बैठक हुई चुनाव की तैयारी की, उस बैठक में नरेंद्र भाई ने पूछा कि भाई ये बताओ किसके पास ईमेल आईडी है, किस किसके पास। अब यहां तो ईमेल आईडी से कोई वास्ते नहीं था, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, एक क्षण सन्नाटा, फिर बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, वो कहने लगे नरेंद्र भाई ये क्या फीमेल फीमेल कर रहे हो, ये फीमेल ईमेल से क्या होने वाला है, और ये कह के वो हंसने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर भी व्यंगात्मक भाव थे,

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: is being written every day. From around the continents, Asia, and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
1: यार लोन भूल गया
2: मैडी
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
6: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी ये तो मेरा सवाल है आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं

0: continents, Asia, and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
1: यार लोन भूल गया मैडी
2: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
2: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन, स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक?
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए. देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग, द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Mary?
4: So just a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about it.
1: जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
6: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
7: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
8: This is Defense Pulse.
9: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
10: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
11: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
12: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield.
13: Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
14: To sustain an aircraft, you need to be able

7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं।

ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। विकसित भारत बाय 2047 वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047 मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम, साथियों ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास ये अद्भुत है। कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा। स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यय तक मेरे जीवन का कण कण, क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा। ये 25 वर्ष का जनविश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव बहुत बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं। और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति

मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योग कर्मसु कौशलम, गीता ने ये भी कहा है, तस्मात् असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है। लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए, वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी, घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था। कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, वी विल डू इट। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी, आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है। आज देश हर वो कदम उठा रहा है जो विकसित भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है।
भारत के युवा स्टार्टअप से

लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक छाए रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की दुनिया में पहचान बने। किसी हिंदुस्तानी के पैर चंद्रमा पर पड़े, भारत जेनेटिक्स जैसी फील्ड में लीडर बने, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे आगे खड़ा हो, हम एआई की फील्ड में ग्लोबल हब बने, हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में गिनी जाए, मेड इन इंडिया उत्पादों का गौरव दुनिया सामान खरीदने के लिए लालायित हो, दुनिया की डाइनिंग टेबल पर हमारे किसानों के उत्पाद हो, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो, जब वाटर गवर्नेंस की बात हो, गरीबों को एम्पावर करने की बात हो, तो दुनिया भारत के सॉल्यूशंस को अपनाए। आने वाले वर्षों में हमारी सामूहिक ऊर्जा, हमारी सामूहिक फोकस इसी दिशा में होना चाहिए। साथियों, भारत 140 करोड़ सपनों का भारत है। भारत असीमित ऊर्जा का, अनगिनत इन आकांक्षाओं का राष्ट्र है। सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, हमें बस हर कदम हर प्रयास को जोड़ना है। हमें एक ध्येय एक मकसद से जुटना है। हमें आजादी मिली क्योंकि हमारे देश के लोगों ने जान दी। अब जब विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा।

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक?
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RDF. There is nothing small about them.
0: Okay.
1: उज्जीवन, nothing small about us.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
0: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan Small Finance Bank. Small?
1: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options, big. Savings or FDP interest, big. Branch network, big. Agar small hota, toh main SAR mein hota. Ujjivan, nothing small about us.
3: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे भी आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.

0: Big branch network.
1: Big.
2: अगर small होता तो मैं साथ में होता. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.

0: campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
2: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.

0: has changed the way the world views India, changed the way India engages with the world, and PM Modi has entirely changed the world of Indian politics. As he completes 25 years in office as head of elected government, the boy from Vadnagar recounted his extraordinary journey, which started from his school and the desire to learn.
1: सीखने की वो ललक मेरे जीवन का हिस्सा बन गई और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा।
0: It was on 7th of October 2001 that 51-year-old Narendra Modi took charge as the CM of Gujarat.
2: Narendra Damodar Modi, whom Gujarat Rajana Mukhyamantri tarike.
0: A state that was reeling under the aftermath of the devastating Bhuj earthquake, which had claimed over 10,000 lives. Within months, PM Modi showed his exemplary leadership qualities and turned things around. The next few years brought unimaginable challenges, but CM Modi stood firm and emerged stronger and more popular than ever before. Indian sage Kabir, in his famous couplet, said, "One must keep critics close," a lesson PM learnt early and never forgot.
1: मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा सांस दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई। जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई।
0: विनर्स डोंट रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। पीएम मोदी शोड दैट विनिंग मेंटालिटी ड्यूरिंग हिज एड्रेस इन न्यू दिल्ली। His hour-long address was not a trip down the memory lane, but almost like a frontline commander's mission briefing, setting clear goals and targets, not just for himself, but also for 1.4 billion Indians.
1: Viksit Bharat by 2047, we will do it. विकसित भारत बाय 2047 मेरे साथ बोलिए टॉप थ्री इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ओलंपिक्स का आयोजन अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।
0: From humble beginnings to historic mandates, Prime Minister Modi has seen it all. He has weathered political storms, pandemics, and global wars. Now,

0: During the third year of his third term as PM, he still hasn't taken the foot off the pedal, refusing to slow down, let alone stop.
1: Karma mera dharma rahega, kartavya palan mera prana hoega, swayam se samasti tak, swayam se vayam tak, mere jeevan ka kan kan, chhan chhan, Bharat bhumi ko samarpit rahega. और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा.
0: While the Prime Minister himself created history, he wants to be a footnote in annals of time. He summed up the quarter century gone by in one line.
1: इन 25 का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा कि मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: सो जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia, and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है सबसे पहले आपको करना क्या है क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ
7: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists, Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग।
3: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: The world is changing. The headlines

0: are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia, and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
1: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
2: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives. Expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
3: This is Defense Pulse.
4: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
5: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
6: Man-unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
7: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
8: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
9: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai to aap इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
10: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे भी आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया, जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई।
1: Winners don't rest on their laurels. PM Modi showed that winning mentality during his address in New Delhi. His hour-long address was not a trip down the memory lane, but almost like a frontline commander's mission briefing, setting clear goals and targets, not just for himself, but also for 1.4 billion Indians.
0: Viksit Bharat by 2047, we will do it. Viksit Bharat by 2047, mere saath boliye, mere saath boliye, top three economy, top three economy, Atmanirbhar Bharat, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष कदम, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।
1: From humble beginnings to historic mandates, Prime Minister Modi has seen it all. He has weathered political storms, pandemics and global wars. Now, during the third year of his third term as PM, he still hasn't taken the foot off the pedal, refusing to slow down, let alone stop.
0: कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा, स्वयं से समस्ती तक, स्वयं से वयम तक, मेरे जीवन का कण कण, क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा।
1: While the Prime Minister himself created history, he wants to be a footnote in annals of time. He summed up the quarter century gone by in one line.
0: इन 25 वर्ष का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा कि मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है।

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल, आप पूरी पिक्चर देख लो.
2: लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
2: ब्रांच नेटवर्क
3: बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
5: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

0: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WeOn.

स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी

स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला intel.com पर।

0: इंडियंस।
1: विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।
0: From humble beginnings to historic mandates, Prime Minister Modi has seen it all. He has weathered political storms, pandemics, and global wars. Now, during the third year of his third term as PM, he still hasn't taken the foot off the pedal, refusing to slow down, let alone stop.
1: Karma mera dharma rahega, kartavya palan mera prana hoega. स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यय तक, मेरे जीवन का कण कण, क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा।
0: While the Prime Minister himself created history, he wants to be a footnote in annals of time. He summed up the quarter century gone by in one line.
1: इन 25 वर्षों का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा कि मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है।

0: Iran's nuclear program, and Russian military capabilities. Then comes the question that has alarm bells ringing in London. Did British intelligence appear in those files? Reports indicate MI6 has begun reviewing whether British intelligence or sources could have been compromised through information shared with Germany. Investigators are still trying to establish where the material went and who ultimately gained access to it. But the potential damage is enormous. Germany relies heavily on intelligence partnerships with Britain, the United States, and other allies. If sensitive information passes through unauthorized hands, the consequences could go far beyond Berlin. Sources could be exposed, intelligence methods could be compromised, future information sharing could be affected. And there's another extraordinary twist. Just one day before Hanning's arrest, Germany's current BND chief issued a stark warning about Russia, saying Moscow was already engaged in a confrontation with the West and that Germany must prepare for a potentially wider conflict.
1: Germany is in danger of being drawn into a violent conflict with Russia. The attempted attack in Leipzig is just one example of this.
0: So who wanted the secrets? Even a fraction of those 2,000 files reached an adversary. The real damage may only emerge years from now. Bureau Report, WION, World is One.
2: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है सबसे पहले आपको करना क्या है क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ
3: अगर आप अभी 25 के हैं 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर क्वाला मैं अभी 25 साल की हूँ 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है तो ऐसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए ट्राई इट योरसेल्फ
4: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists, Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

0: मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा।
1: It was on 7th of October 2001 that 51-year-old Narendra Modi took charge as the CM of Gujarat.
2: Narendra Damodar Das Modi, whom Gujarat Rajyana Mukhyamantri tarike.
1: A state that was reeling under the aftermath of the devastating Bhuj earthquake, which had claimed over 10,000 lives. Within months, PM Modi showed his exemplary leadership qualities and turned things around. The next few years brought unimaginable challenges, but CM Modi stood firm and emerged stronger and more popular than ever before. Indian sage Kabir, in his famous couplet, said, "One must keep critics close," a lesson PM learnt early and never forgot.
0: जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई। जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई।
1: विनर्स डोंट रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। पीएम मोदी शोड दैट विनिंग मेंटालिटी ड्यूरिंग हिज एड्रेस इन न्यू दिल्ली। His hour-long address was not a trip down the memory lane, but almost like a frontline commander's mission briefing, setting clear goals and targets, not just for himself, but also for 1.4 billion Indians.
0: Viksit Bharat by 2047, we will do it. विकसित भारत बाय 2047 मेरे साथ बोलिए टॉप थ्री इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ओलंपिक्स का आयोजन अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।
1: From humble beginnings to historic mandates, Prime Minister Modi has seen it all. He has weathered political storms, pandemics, and global wars. Now, during the third year of his third term as PM, he still hasn't taken the foot off the pedal, refusing to slow down, let alone stop.
0: Karma mera dharma rahega, kartavya palan mera pran hoega. स्वयं से समस्ती तक, स्वयं से वयम तक, मेरे जीवन का कण कण, क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा।
1: While the Prime Minister himself created history, he wants to be a footnote in annals of time. He summed up the quarter century in one line.
0: इन 25 वर्षों का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है।
3: And before we go on any further, a quick look at what else is lined up for you on the show tonight. 13 Navy personnel reportedly among 18 under the scanner for alleged links to Pakistan intelligence operatives. We get you the complete story. The US midterm elections could turn out to be a big nightmare for Donald Trump. We tell you what the latest numbers show. All this and a lot more coming up.

7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं।

ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। विकसित भारत बाय 2047 वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047 मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम, साथियों ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास ये अद्भुत है। कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा। स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यय तक मेरे जीवन का कण कण, क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा। ये 25 वर्ष का जनविश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव बहुत बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं। और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया,
और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योगः कर्मसु कौशलम, गीता ने ये भी कहा है, तस्मात् असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है। लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए, वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी, घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था, कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, वी विल डू इट। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी, आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है। आज देश हर वो कदम उठा रहा है जो विकसित भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है। भारत के युवा
स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक छाए रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की दुनिया में पहचान बने, किसी हिंदुस्तानी के पैर चंद्रमा पर पड़े, भारत जेनेटिक जैसी फील्ड में लीडर बने, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे आगे खड़ा हो, हम एआई की फील्ड में ग्लोबल हब बने, हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में गिनी जाए, मेड इन इंडिया उत्पादों का गौरव दुनिया भारत का सामान खरीदने के लिए लालायित हो, दुनिया की डाइनिंग टेबल पर हमारे किसानों के उत्पाद हो, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो, जब वाटर गवर्नेंस की बात हो, गरीबों को एम्पावर करने की बात हो, तो दुनिया भारत के सॉल्यूशंस को अपनाए। आने वाले वर्षों में हमारी सामूहिक ऊर्जा, हमारी सामूहिक फोकस इसी दिशा में होना चाहिए। साथियों, भारत 140 करोड़ सपनों का भारत है, भारत असीमित ऊर्जा का, अनगिनत इन आकांक्षाओं का राष्ट्र है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, हमें बस हर कदम हर प्रयास को जोड़ना है, हमें एक ध्येय एक मकसद से जुटना है। हमें आजादी मिली क्योंकि हमारे देश के लोगों ने जान दी। अब जब विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा।